जाने लड़ाई विच ओ हाल करना के दुनिया नू हैरान कर देना। ए गल क्यों कही आओ इस बारे विचार करी। आनंदपुर साहब तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज निवास करते ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने

इतने गुलाम हो चुके सन, इन्ने नितानी हो चुके सन, इन्ने मन कमजोर हो गए सन के मुगल बादशाह दे अगे सिर नहीं सन चुक सकते। सगा

के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक बारी तुसी किला खाली कर दियो किधरे होर चले जाओ। मैं कसम खाना कुरान शरीफ दी के तुहानू कुछ नहीं किया जाएगा। पहाड़ी राजिया ने आटे दी गऊ बना के कसम खाधी। सिखा ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह नु महाराज आप किला खाली कर दियो। कई महीने हो गए ने किले विच असी बैठे हां, खादा भी कुछ नहीं, खान नु रिहा भी कुछ नहीं। औरंगजेब मुसलमान है, उसने कुरान शरीफ दी कसम खादी। पहाड़ी राजिया ने आटे दी गऊ बना के कसम खादी है ये साढ़े ते हमला नहीं करनी। पर गुरु साहब ने कहा इन्हां ते भरोसा ना करो, इन्हां कसमां तोड़नियां ने साढ़े ते हमला जरूर करना। इस तरह करदे हां कुछ दिन बीते। भाई मान सिंह इसने बेनती की थी, महाराज पता नहीं किन्ने दिन होर इस किले विच भुखिया रहना पवेगा, कृपा करो अगर आपने किला खाली नहीं करना तो सानू आग्या दियो, असी अपने घरां नू जाई। गुरु साहिबां ने कहा मैं ते पहला कहा सी कि जिन्हें मेरे कोल आना है, जिन्हें मेरी गली विच पैर पाना है, वो अपना सिर अपनी तली ते रख के

अपने घरां नूं तुर पए, पर गुरु डोलिया नहीं, गुरु डरिया नहीं, क्योंकि गुरु सच ते खलोता है, सच वास्ते लड़दा है, अपने भले वास्ते नहीं, ओह ते दुनिया दे भले वास्ते इस दुनिया विच आया है।

गुरु नूं ए बिदावा लिख के दे आए, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख ने। अपने घरां नूं तुर पए। जदों भाई मान सिंह अपने साथियों दे नाल अपने घरां नूं पहुंचे, घरवालियां ने पुछया, सुनाओ की हाल है गुरु साहब दा, आनंदपुर साहब दे किले दा की हाल है, की हाल है साहबजादियां दा, गुरु के परिवार दा, सिखां दा। तां भाई मान सिंह अपने परिवार नूं कहण लगे, असी ते गुरु नूं किले विच छड के आ गए, किले नूं घेरा पिया, लखां दी तादाद विच फौज है, असी गुरु नूं छड के आए हां, ते नाल ए वी लिख के दे आए हां, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख ने। ए गल घरां वालियां ने सुनी, उन्हां दियां अखां गुस्से नाल लाल हो गईयां। उन्हां ने कहा, ठीक है, अज गुरु नूं छड आए, अपनी जान नूं प्यारी समझ के, एक दिन ते मरना है, कदू तक जीवोगे? पतित होके जीवना, दुनिया दे डर तों सिख गवा के जीवना, को जीवना है? एक दिन ते मरना है, जे लड़दे मर जांदे, गुरु दे सामने शहीद हो जांदे, गुरु तू अपनियां जाना वार देंदे, तां असी शुकर करना सी, साडे पति धन ने जेड़े सेवा करदे मरे, अज तुसी सिखी गवा के आए हो, गुरु नूं छड के आए हो, मौत तो बहुत डर लगदा, दुनिया दे सुख प्यारे लगदे, इस तरह करो, इस साडियां चुनियां लै लो, पग्गां ला दिओ, अपनियां चूड़ियां ला के अगे रख दित्तियां, ए चूड़ियां पा लो, तुसी घरां विच बैठो, ए कमर कस्से खोल के सानू दिओ, कमर कस्से करके असी जावांगियां, असी लड़ाई विच हिस्सा लवांगियां, असी गुरु दी सेवा करांगी। जदों ए गल घरां वालियां ने कई फिटकारां पईयां, खून ने फिर उबाला खादा के मना बड़ी भुल कीती, दुनिया दे सुख बदले गुरु नूं छड दित्ता, सिखी छड दित्ती, पर जिहदी कोई इज्जत नहीं ओहदा भी कोई जीवना है, सिर झुका के जीवना कोई जीवना है, धर्म वास्ते मरना, धर्म दे राह ते चल के मरना, देश कौम दी सेवा करदिआं मरना, असल विच जीवन है। पर हुण ए नहीं पता कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज किस पासे, पता लग चुका है, आनंदपुर साहब दा किला गुरु साहिबां ने छड दिता, क्योंकि सिखां ने बड़ा जोर पाया किला छड़न वास्ते, किला छड़िया, जिन्ना कुरान शरीफ दी कसम खादी उन्ना कसमां तोड़ दित्तियां, जिन्ना आटे दी गऊ बना के कसम खादी उन्ना भी कसमां तोड़ दित्तियां, गुरु साहिबां दे काफले ते हमला कर दिता। इस हमले दे विच गुरु साहिबां दा बड़ा कीमती समान, कीमती पुस्तकां लिखियां हुईयां सरसा नदी विच रुड़ गईयां,

जिथे वड़े साहबजादे शहीद हुए उथों तुरे माछीवाड़े आए माछीवाड़े तो चले कई जगह होंदे साहब जी जगह जगह ठहर दे लखी जंगल पहुंचे संगतां गुरु का जस गुरु के दर्शन करन वास्ते फिर आन लग पईयां ओही रौनकां फिर लग गईयां पुत्रां दे शहीद होण दा कोई गम नहीं जदों गुरु साहिबां दे धर्म सुपत्नी माता सुंदरी जी ने पुछिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं महाराज मेरे चारों साहबजादे किथे ने ता गुरु साहिबां ने कहा सी तुहाडे चार पुत्र उन्हां सारियां तों वार दित्ते ने जिहड़े जिउंदे ने जिन्हां हाली जिउणा है तुहाडे साहबजादियां ने सिखी दा महल होर पक्का कर दिता है अपना खून दे के समा बीतिया गुरु साहब जी हुण कोट कपूरे पहुंचे साहबां नूं पता लगा सरहिंद दा नवाब वजीर खान 5000 फौज लैके पिछा करदा आ रहा है तां गुरु साहबां ने कपूरे नूं कहा कपूरिया साडे पिछे वजीर खान 5000 दे करीब फौज लैके आ रहा है तू अपना किला दे तां कि इत्थे असीं उहदे नाल दो हथ कर लईए कपूरा अखवांदा गुरु दा सिख है पर औखा समा देखिया तां इह वी मूंह फेर गया कहन लगा महाराज मुगलां दा राज है मैनूं मुगलां कोलों डर लगदा है जे तुहानूं किला दिता ते मुगल मैनू खत्म कर देने वजीर मैनू खत्म कर देवेगा बादशाह मैनू सजा देवेगा ता गुरु साहब बन गया जिन्हां दे मन विच डर है उन्हां दी सानू लोड़ नहीं अज भी इहो जे लोक आए ने जिहड़े दुनिया दे सुख बदले पतत होंदे ने सिखी छड्डदे ने अमृत

डर लगदा है। अगर मैं आप नूं किला दिता ते मुगलां ने बादशाह ने मैनू खत्म कर देना। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, कपूरिया भय वाले मना दी सानू लोड़ नहीं, इस तरह कर सानू कोई अपना आदमी दे जेड़ा इस इलाके दी सानू जानकारी देवे। लिखे है के कपूरे ने अमृत भी छकिया पर गुरु साहब जी हुण इत्थे रहे नहीं, कपूरे ने

मजबूत कमर कस्सा कीते ए है भाई मां सिंह म्यान विचू कृपान खिची जकारा छड़िया लकीर मारी लकीर टप्पी ते वंगार के किया भाई मैनू अज गुरु दे हुकम दा पता लग गया। मैं अज फैसला कर लिया है हम तो गुरहित

लाशां ते लाशां डिग रहीआं ने, धरती खून दे नाल लाल हो गई। उच्चे टिब्बी ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बैठे ने। दान सिंह कहन लगे, महाराज जापदा है दुश्मन ने हल्ला कर दिता है। ता गुरु साहब जी मुस्कुराते हुए कहन लगे, दान सिंह जे दुश्मन ने हल्ला किया है ता खालसे ने भी बोलबाला कर दिता। कमसान का युद्ध शुरू हो गया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उच्ची टिब्बी ते बैठे, कदी कदी ऐसे तीर छड़दे ने जेड़े तीर वजीर खान दे जरनैलां सरदारां नूं लगदे ने, ते उन्नू बड़ा भारी नुकसान हो रहा। आखिर लड़दिया लड़दिया 13 सिंह बाकी रह गए। इन्हां 13 सिंघां ने हुण बंदूकां छड़ दित्तियां, कृपाना कढ़ियां, हाथां विच ढालां फड़ियां, जकारे छड़दे बेरियां दे उल्लों निकले ते दुश्मन दे उत्ते बिजली दी तरह टुट के पै गए। उन्हां सिंघां दा कृपाना सूत के दुश्मन ते टुट के पैना गुरु साहिबां ने

दियो ओज ऐसो हजारन जैसो महा को पठाने गज कीट माने बड़े उत्साहे रण क्षत्र गाहे उछलने छलंगी गुरु के पुचंगी के मेरे पुचंगी मेरे पुत्र छाला मार मार के बड़े उत्साह दे नाल लड़ाई दे मैदान विच नितरे कल्ला कल्ला हजारां ते भारू पिया महा को पठाने गज कीट माने बड़े क्रोध दे विच दुश्मन ते टुट के पए हाथियां नू भी कीड़ियां दे समान समझदे ने बड़े उत्साह बड़े उत्साह विच लड़दे ने रण क्षत्र गाहे रण कहिंदे ने लड़ाई दा मैदान लड़ाई दे मैदान विच शत्रुआं नू अपने पैरां थले लताड़िया चले वीर सोऊ बड़े उत्साह परे शस्त्र मारे महा जंग माहे कड़े म्यान तेग गहे हथ ढाले चलाकी करन ते सो छाले उछाले म्यान विच तेग कढ़ी हथां विच ढाल फड़ी बड़ी चलाकी दे नाल छाला मार दे वार बचांदे वार कर दे ए सिंह दुश्मन दे नाल लड़दे पए साहब जी ने बड़ी सूर वीरता दा नजारा अपनी कलम नाल आप लिखिया कड़े म्यान तेग गहे हथ ढाले चलाकी करन ते सुछाले उछाले आखीर चटापट जुटे लटा लट होए सटापट सुटे कटा कट जोए कटा कुट कटे चटापट मारे खटा खट खोटे हटा हट हारे अखीर लड़दे मरदे ए सिंह भी शहीद हो गए। वजीर खान जद देखे उसने कि ना कोई तीर चल रहे है ना कोई गोली चल रही है इसने फतेह का डंका बजाया वापस मुड़ गया। हुण भाई मान सिंह मुदड़े मुंह पे है सैंकदा पे है सह टुटदे ने हुण भाई मान सिंह अरदास

जिन्ना बल सी सारा ला दिता है, हुण ते पासा परतन दी भी हिम्मत नहीं, हुण कर कृपा मैनू दर्शन दे, ओ बिदावा पाड़ दे जिदे ते लिखे है तू साडा गुरु नहीं।

उस लड़ाई दे मैदान पहुंचे। कोड़े तू उतरे ने जेब च रुमाल कढ़िया, जेड़ा भी सिंह शहीद होया देखिया उहदे कोल जाके बह जांदे ने, रुमाल दे नाल उहदा मूंह पूंझदे ने, मत्था चुमदे ने, नाले वर दिंदे ने, ए मेरा 5,000 पुत्र, ए मेरा 10,000 पुत्र, ए मेरा 20,000 पुत्र है, ए मेरा 30,000 पुत्र है, इस तरह वर दिंदे। उत्थे पहुंचे जिथे भाई मान सिंह मोदड़े मुंह पे कमर कसे, तू पहचाने कि ए ता मेरा जथेदार पुत्र है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उत्थे वीर आसन होके बैठ गए, भाई मान सिंह नु सीधा कीता, भाई मान सिंह दा सिर अपनी गोद विच रखिया, चेहरा देखिया, दाड़ा देखिया, खून मिट्टी नाल भरे, रुमाल दे नाल मुंह पूंझिया, चेहरा साफ कीता, पिता शहीद कराया, गम नहीं कीता, अखां सामने पुत्र शहीद हो गए, गम नहीं कीता, परिवार विछड़ गया, कंडियां ते सौना पिया, कंडियां ते तुरना पिया, गम नहीं कीता। पर अज जदों भाई मान सिंह दा प्यार देखिया ते गुरु साहिबां दीआं अखां विच अथरू आ गए, अथरू किरे भाई मान सिंह दीआं गल्लां ते जा पए, मूंह विच पाणी पाया, भाई मान सिंह ने अखां खोलियां, अखां दे विच कलगी दी लिशक पई, हाथ जुड़े ते गुरु साहिब जी बेबल होए, भाई मान सिंह नूं छाती नाल लाया ते कहिंदे ने बेटा मैं आ गया, मंग की चाहीदा है, अज जो मंगेगा गुरु नानक तैनू देवेगा। भाई मान सिंह हाथ जोड़े हुए ने, पातशाह टूटी गंढ लै, ओ जेड़ा कागज, ओ बेदावा जिदे ते लिखे तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं, ओ बेदावा पाड़ दे, टुट्टियां नू मेल लै, अपने चरणा विच जगह दे दे। गुरु साहिबां ने ओ कागज हाली भी संभाल के रखिया सी, कागज कढ़िया, ओ बेदावा भाई मान सिंह ने दिखाया, ओ कागज उसे वेले पाड़िया, टुकड़े हवा विच उड़ा दिते, बेदावा पाटिया, भाई मान सिंह ने शुक्र कीता, अज सुरखरु हो गए, गुरु ने बख्श दिता। हुण गुरु साहिबां ने कहा मां सियां पंथ वास्ते ते बहुत कुछ ले लिया, कुछ अपने वास्ते मंग, कहें ता जिंदगी दे दें, राज दे दें, अज जो मंगेगा तैनू मिलेगा, पर धन है जे गुरु ते सिख भी घट ने। भाई मान सिंह कहिंदे ने पातशाह कुछ नहीं चाहिदा, तेरी गोद विच जान निकल जाए होर मैनू की चाहिदा, तेरे चरणा विच जगह मिले इस तू वड़ा सुख होर केड़ा हो सकता है, राज ना चाहू मुक्त ना चाहू मन प्रीत चरण कमला रे, अपने चरणा विच जगह दे होर कुछ नहीं चाहिदा। जदों ये गल कही साहिबा ने भाई मान सिंह नूं अपने गल दे नाल लाया, भाई मान सिंह ने हुण आखरी वारी धन सतगुरु कहा, मुंह बंद हो गया, अखां बंद हो गई, हथां दा जुट खुल गया, भाई मान सिंह पूरा हो गया। ओ नैन मीटे गए से, जुट हथ दा खुल पिया से, ओ सिख पूरा हो गया, गुरु गोद प्यारा वसया, दरबार उजल मुखड़ा ले जाए सरूपे वसया। ते गुरु साहिबां ने भाई मां

करके दिखाया कि असा तो गुरु वास्ते प्राण देने ने और प्राण दिते भी। आओ भाई अरदास करिए सच्चे पिता एहो जिहा जज्बा एहो जिहा उत्साह सानू भी दे ताकि तेरे राह ते चलदे होए सच ते चलदे होए दुनिया दे भले वास्ते जीविए जो तेरा मिशन है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला अमृत छकीए बाणी नाल जुड़िए तेरे नाल जुड़िए धर्म वास्ते लड़िए।

मैं अनजान हाँ, मैनू तैरना नहीं आउंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते बना।

मैं तेरे तो बलिहारी जावा, मैनू भगती दी दात दे जिदे करके ए मेरे जीवन दी बेड़ी संसार समुंदर तो पार लंघ सके। ता आओ किरपा करो सरवण।